0: अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको इस जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट्स आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज्ड होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन है रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WII से जुड़े? और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर। उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में। देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप। उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण

0: राज्यों से वेक को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है। तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
1: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है। तो उस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
0: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी होती है। तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके 6th क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 से 12। तो हमने ऐसे जूनियर, सीनियर, मिडिल, ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में। देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है।
0: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रहरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
1: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि ये पोचिंग हुई है और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है। अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में। हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है, वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू। ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं।
0: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
1: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क। सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से।

0: जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
1: सर एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज करते हैं, दैट इज किर्कपैट्रिक मॉडल. सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स. सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूजफुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूजफुल लगी है ट्रेनिंग है नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज किया है नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं. सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है.
0: ये जानना चाहिए कि ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में.
1: सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन. उनको ये यूजफुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूजफुल लगी हैं कि नहीं. उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स. उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया. उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोगों हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा. तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता है.
0: मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था. जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे.
1: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था. तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना. तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या. क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है. धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी. सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था.
0: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, उत्तराखंड में रहते हैं हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्य जिसका आप जिक्र करना चाहें?
1: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही. तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए. सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको. हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें. अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था. तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर.
0: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित पांच राज्य हैं
1: जी,
0: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
1: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कफनौल में. हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग. तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का, स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश. तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे. तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है, बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे. तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का. हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से. सो उन्होंने बोला नहीं हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं. तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे जब हमारा स्कूल बंद है. तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो, उन्होंने कहा हाँ हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे. तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में है।
0: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे। तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
1: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है। तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है, तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा या तो रास्ता बंद है। तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है। तो ऐसे गेम्स हो गए या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं, तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है। तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम करेगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की।
0: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो सम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
1: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है, और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
0: तो ये जो, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं। तो ये आप, ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप, ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
1: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं। जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं, एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
0: बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या, किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
1: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गया। हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गई, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं, जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में। तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं, प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
0: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
1: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए, वो एक टीम बनाई जाती है जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
0: तो ये ट्रेनिंग आप ही देते हैं या?
1: रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है। तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए, जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाते हैं, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है। तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है, ये हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
0: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
1: जी सर, बिल्कुल आ रहा है। हमारे काफी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर। और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है। इन सबकी पब्लिकेशंस भी हैं।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट है उसको भी आप फॉलो करते हैं। और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं, जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
1: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं। हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे WIM एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है, तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़।
1: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए, तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
0: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप की जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, यह आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे पी के आरजे प्रदीप। और इस प्यारी सुबह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। एक नया सवेरा, नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन हर दिन की शुरुआत हम एक नए आयाम के साथ, नए काम के साथ करनी चाहिए। और आज भी बहुत सारी बातें होंगी काम से जुड़ी हुई, जी हाँ, करियर से जुड़ी हुई। सुनते रहे रेडियो केदार, बात हिमालय की।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस चमक जाओ।

0: 心呢？
1: क्या कहा?

0: उत्तराखंड के जन जन की बात, रेडियो केदार है आपके साथ।
1: क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।

0: नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट्स आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन है रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चंस हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजंस है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WII से जुड़े? और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में। देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में ही जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप। उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में, वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता। तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी से, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया है सर। और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशन होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है, तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर करते अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी होती है, तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके 6th क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 से 12, तो हमने ऐसे जूनियर, सीनियर, मिडिल, ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है, और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में. देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है.
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रहरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है. अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए. पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि ये पोचिंग हुई है और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है. अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में. हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है, वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू. ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं.
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है, और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं. सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
2: अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क. सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से.
1: जैसा कि आप ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
2: सर, एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किर्कपैट्रिक मॉडल. सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज़ लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स. सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूजफुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूजफुल लगी है ट्रेनिंग या नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ किया या नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं. सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है.
1: ये जानना चाहिए कि ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में.
2: सरल शब्दों में अगर हम बताएं, तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन. उनको ये यूजफुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूजफुल लगी हैं कि नहीं. उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स. उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया, और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया. उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता है.
1: मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे, जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था. जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे.
2: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था, एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था. तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना. तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या. क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है. धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी. सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था.
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है. उत्तराखंड में रहते हैं, हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है. तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्या जिसका आप जिक्र करना चाहें?
2: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी, वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही. तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए. सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको. हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें. अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था. तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं. तो ये मेरे एक एक्सपीरियंस है सर.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित 5 राज्य हैं
2: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
2: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कफनौल में. हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग. तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का. स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश. तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे. तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है. बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे. तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों, आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से. सो उन्होंने बोला नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं. तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे, हमारा स्कूल बंद है. तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे. तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए. तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में? क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे. तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
2: सर, जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है. तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है. जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है. तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाते हैं तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा, या तो वो रास्ता बंद है. तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है. तो ऐसे गेम्स हो गए, या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज है. तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है. तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम के आएगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की.
1: अच्छा, जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो SEM-TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
2: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटीरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
1: तो ये जो क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं, तो ये आप ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
2: नहीं सर, ये हम WIM करते हैं, जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम ही यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा था इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
1: बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
2: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गया, हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में, तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
1: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
2: अगर हम सर बात करें ना उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
1: तो ये ट्रेनिंग देते हैं या?
2: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाते हैं, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है, तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है यही हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
2: जी सर बिल्कुल आ रहा है, हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है, इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं, और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WIM से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसा आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
2: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं, हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती है। तो यहाँ पे हमारे डब्ल्यूएम एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है। तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूंगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज।
2: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए। तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

किस्से, प्यार मोहब्बत के किस्से बेकार हुए। जब देखा तो दिल के टुकड़े हजार हुए।

0: आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको इस जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट्स आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज्ड होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन है रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WII से जुड़े? और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर। उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में। देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप। उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहा है संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में, वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता। तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरीज थे, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग्स करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया है सर। और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं, तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है। तो उस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी होती है, तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके 6 क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 से 12, तो हमने ऐसे जूनियर सीनियर मिडिल ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है, और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में. देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है.
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रेरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है. अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए. पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि पोचिंग हुई और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है. अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में. हमने और सिखाया गया है क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है, वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू. ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं.
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है, और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं. सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
2: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क. सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज एनहांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे. देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से.
1: जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
2: सर, एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किर्कपैट्रिक मॉडल. सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज़ लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स. सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूज़फुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूज़फुल लगी है ट्रेनिंग है नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ किया है नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं. सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है.
1: ये जानना चाहिए कि ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में.
2: सरल शब्दों में अगर हम बताएं, तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन. उनको ये यूज़फुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूज़फुल लगी हैं कि नहीं. उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स. उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया, और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया. उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ट.
1: मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे, जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था. जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे.
2: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था, एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था. क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था। तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना। तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हैं क्या। क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है। धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी। सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, उत्तराखंड में रहते हैं, हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्या जिसका आप जिक्र करना चाहें?
2: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही। तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए। सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको। हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें। अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था। तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर।
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित 5 राज्य हैं
2: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
2: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कफनौल में। हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का, स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश। तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे। तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है, बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे। तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से। सो उन्होंने बोला नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं। तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे जब हमारा स्कूल बंद है। तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में है।
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे। तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
2: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है। तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है, तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा या तो रास्ता बंद है। तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है। तो ऐसे गेम्स हो गए या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं, तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है। तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम क्या, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की।
1: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो हम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
2: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
1: तो ये जो क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं, तो ये आप ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
2: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं। जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं, एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं गेम्स को खिलाते हैं।
1: बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
2: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गया, हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में। तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
1: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
2: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है, जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
1: तो ये ट्रेनिंग देते हैं या?
2: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाते हैं, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है, तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है यही हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
2: जी सर बिल्कुल आ रहा है, हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है, इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं, और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WIM से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
2: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं, हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती है। तो यहाँ पे हमारे डब्ल्यूएम एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है। तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़।
2: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए। तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, यह आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार, सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।